0: विविध जाति भाषा धर्म और संस्कृति को साझा फुलवाणी हो। मानवता नहीं सभी धर्म को मूल धर्म हो। आपसी सम्मान सहिष्णुता सभी धर्म को संदेश हो। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले संयमता अप्न अपुष्ट समाचार अफवाहमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक समाचारलाई विश्वास नगरौं।
1: मतभेद भए संवादबाट समाधान खोजौं। सबैले कानूनको सम्मान गरौं।

विश्वविद्यालय लगाए पांच विश्वविद्यालय ने स्नातक बीएससी डिग्री और स्नातकोत्तर एमएससी जमा तो राज्यभरी अध्ययन का कार्यक्रम संचालन करते रहे। प्राविधिक ज्ञान नभएका अन्य विषय का स्नातक समेत

0: Keep my daddy's and these.
1: रेडियो गुरुवार्ता एफएम द्वारा जनहितमा जनाइ सन्देश

चीन करते तो क्या चिंता कर सो पांचवें गुरु जो सकते थे साहब वहां से

रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश। रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।

seats that are digital or is in Georgia. Georgia, TSR, Total Person. पटना जिला स्तर में परियोजना अभियोगीकरण का कार्यक्रम संचालन करना तथा ज्यादातर संस्था बीच नियमित समन्वय को समीक्षा का चयन संस्थागत करना निर्देश करवा सहभागिता सहकारी पारदर्शिता जवाबदेहिता को परिवर्तन से परियोजना का क्षेत्र में बाल बालिका किशोर किशोरी तथा युवा भवन का जीवन स्तर सुरक्षा को समग्र कल्याण में दीर्घकालीन सभा

अधिकार समिति का आयोजन सचिव कृषि महानिर्देशक देखी विकास प्राधिकरण सकल समन्वय अभाव पूर्ण सरकार विकास राईले विकास निर्माण गम्भीर असर प्रदान जानकारी दिएर बैठक महानिर्देशक देखी सड़क पश्चिम राइट अफ वे भेटरपुर गर्न सड़क विभाग सहजीकरण गर्न सके सड़क विस्तारका क्रममा उपल हटाई विद्युत प्राधिकरणले अपेक्षित सहयोगको तदारुकता देखाएर बटेलबाट महानिर्देशक देखि आयोजनामा हुँदा ढिलाइका कारण राज्यहरूलाई पूरा आर्थिक क्षति घुटेर विश्वस्त पर्दा उहाँ विद्युत प्राधिकरण र सड़क विभाग बीच अब समय बितिर समस्या समाधान गर्न प्रयास स्वीकृत रहेको उहाँ पत्रिकाबाट

0: मोबाइल नहीं है, एक हिसाब से 100 वोल्ट उसका जीरो
1: विराट सिंह जो है ये कोई यमा ऐसा बा कि जो रास्ता यमा सीखी तो उन्हें रास्ता नहीं यमा बढ़िया फिर हो बहुत बढ़िया चीज हो और फिर बहुत बेकार
2: रेडियो गुरुद्वारा FM 89.7 MHz।

किसी छत्ते से अगले सहभागी तो जवाबी पत्र भाई को सा राष्ट्रीय खेल प्रतिष्ठा तथा के बोले बुधवार एशियन गेम्स में नेपाल को सहभागिता का लगे खेल खिलाड़ी संख्या को टूंग लगाए संगे इस पटक नेपाली टोली को स्वरूप स्पष्ट भाई को विश्व एशियन गेम्स सेप्टेम्बर 19 देखि अक्टूबर 4 सम्म जापान में आयोजना होते।

0: on Chicago cover.
1: अपना बजार बासगरी बैठे खड़ा तो दिया कर हल पोषण या अस्पताल बासगरी में यह सही सके महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सृजना पोखरे से महिलाओं का नक्शा पूर्वक संबंधित चेतना तथा परामर्श सशुल्क सेवा दे देना बात
0: बाल रोग विशेषज्ञ रोशन पोखरे से बाल रोग चेक जांच तथा परामर्श सेवा सशुल्क दे देना बात
1: जनरल सर्जन तथा लैप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित पाठक से प्यार पित्ताशय हर्निया एपेंडिक्स लगायत गाथा गुठी बिना चेक जांच तथा ऑपरेशन सशुल्क सेवाक दिनाबा
0: समय में विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित चेक जांच कराकर का फायदा उठाई
1: औषधि अस्पताल का संपर्क नंबर 084-00-192 4-00-210 औषधि अस्पताल पास करी खुला चुका था
2: विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचापको झुकीमा छन्। प्रस्तुति तथा तयारी खाना जंक फूड तथा टिप्पाका खानामा सोडियम धेरै मिलाउँदा मुटुको जोखिम बढाउने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले दैनिक 5 ग्रामसम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ।
3: नियमित रूपमा हेर्नु तर शारीरिक व्यायामले मुटु स्वस्थ बनाउन मदत गर्छ।
2: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता तथा तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
3: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
2: चिलो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
3: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौं।
2: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।
4: रेडियो पूर्वाधार एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: Thank you.

0: लक्ष्मीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: अपना बजार बासगढ़ी बर्दे खना चोक लखरहल कौशल्या अस्पताल बासगढ़ी में इस शनिचर दिन महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सृजना पोखरेल से महिला में कनक सबको रोग संबंधी चेक जांच तथा परामर्श सशुल्क सेवा योजना बा
2: बाल रोग विशेषज्ञ रोशन पौड़ेल से बाल रोग चेक जांच तथा परामर्श सेवा सशुल्क योजना बा
1: जनरल सर्जन तथा लैप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित पाठक से प्यार पित्ताशय हर्निया एपेन्डिक्स लगायत जाँठागुठी बिना चेक जाँच तथा अपरेशन सशुल्क सेवा कैदिनाबा
2: समयमा विशेषज्ञ डॉक्टर से चेक जाँच गराएका मौका फाइदा उठाई
1: कौशल्य अस्पतालको सम्पर्क नम्बर 0484-0092-400-210 कौशल्य अस्पताल पासगढी खनाल चोक लख।